उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तो आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थो दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गादर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी। ते जदो साल बीत जाना ते गुरु अंगद देव पातशाह ने बुला के बाबा अमरदास जी नू एक परना दे देना ते ओ परना लैके बाबा अमरदास जी सिर ते बंद लेंदे सी। सारे साल दी सेवा दा फल की मिलना एक परना, लेकिन कदे मन विच नहीं आया मैनू एक परना ही मिले एडी सेवा करके। आख्या नहीं आजे जिंद भी लग जावे गुरु दी सेवा विच तां ए थोड़ी है। सात संगत बोलो सिरी सेवा करदियां करदियां अज 12 साल दा आखरी दिन आया जदों बाबा अमरदास जी ने गागर चुकी नेम नहीं टूटन दिता। 12 साल दे विच कोई दिन ऐसा नहीं खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। अज 12 साल दा आखरी दिन है अज एडा चखड़ चल रहा है एडा मीह पै रहा है के रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे होए अद्धे रस्ते पहुंचे जिथे आप अद रस्ते विच आराम करदे सन। खड़ा साहब ते बैठे उथों मत्था टेकिया गुरु अंगद

निर्धन को पलिए निर्धन को पले निर्धन को हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक बारी सारे आखो सतनाम अज पंजवा वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा का ना है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंग दे हैं आज पंजवा निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैण पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने ओ भी निर्धन नू पालना है साथ संग आज पंजवा निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवा निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

आया था सा संसार में सेवा सिमरन परपकार करन ली, पर मैं ता कोई भला कर्म ना कर सकिया। मैं बना के रखनी सी नाम जपन वालियां दे नाल, मैं बना के रखनी सी तेरे नाल हे वाहिगुरु। मैं ता किसी नाल भी ना बना के रखी, मैं ता पदार्था नाल ही बना के रखी, इसलिए राख लियो हुण मैं तेरी शरणा। मंदे चंगे जेहो जे हां वाहिगुरु, तू सानू अपने चरणा विच रख लै, बख्श लै।

आशा रूपी श्वान बैठे जिदे नाल तृष्णा ते आशा दिया दो कुतियां भी नाल हन, क्योंकि मनुख सवेर तो शाम तक अपने दंदियां विच ज्यों ज्यों पौकण लगदा है, सारा दिन बीत जांदा है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ए सवेर तो शुरू हुंदा है अपने कार विहारा विच खचत, ते रात तक इस नूं तेरे नाम जपन दा कोई पता नहीं हुंदा। इसलिए धन गुरु नानक पातशाह कहदे ने, एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौकै सदा बया। आशा ते मनसा दिया कुतियां इस दे अंदर हन, जो इस नूं तेरा नाम भुला दे दिया हन, कदी ओ कम है कदी उधर तोड़ दे दिया हन, कदी उधर तोड़ दे दिया हन। ये साडी बिरती है, उचारण करो श्री वाहेगुरु। कूड़ शुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार, मैं पत की पंद ना करनी की कार, हो बिकड़े रूप रहा बिकराल। हे वाहेगुरु, साडा ए हाल है, पर हुन किवें साडा पार उतारा होवे। तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम ही तेरा तार सकदा है। ते ओ अरदास कीतिया भाई प्राप्त होंदा है, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे दया करो, किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तार।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाना एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहू नाल पा

तेरी समर्था महान है, करता पुरख जू है, सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में। और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण, मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे, आदर करना होवे, तां भी हाथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तां इह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक दे जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा, पसीने पूंजदा है। सजना मित्रां नूं कहिंदा है, शुकर करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी। कार्ज आया रासे, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख विनासे, जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जां च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ये गल वखरी है कि अरदास करन वाला बंदा कार्ज दी संपूर्णता तो बाद ए नहीं कहिंदा मैं कम नबेड़ दे, बल्कि वह तो यह कहिंदा

तीन चीजां दा जिक्र होएगा, चार लैणा होणगियां, चार स्टेप दे विच तीन चीजां, 12 दा समेल करके गरीब नवाज सच्चे पातशाह तिन्ना विच मिक्स कर देणगे।

सोई पुरख अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मलनासी।